जाए सात सात सात प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद कने बख्या नहीं साच सात सात सब की ना कोट मदे कने बरले जीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घाट घाट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक।

हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब कोई ना हो न जाने मेरा बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु तेमर दास राम दास हई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरी है घर नौ निध्यावे ताए सब थाई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई सहाय दसवें पातशाह जी की जोत धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन की दर का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारियां चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिना प्यारे सचारियां की कमाई का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्मेत सीस जिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां चढ़े तो नारायण चराए गुरुद्वार की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वास संघ निभाही तिना की पवित्र कमाई का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु पंजा तख्त सरबत गुरुद्वारा का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चिते आवे चिते आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रहा है देख ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पादा राखा हे आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहिदा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों खालसा पंथ नूं छोड़िया गया खुले दर्शन दी दास सेवा संभाल दा दान पैरे खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणे दिमान नताणे दे तार न्योटियां दी ओट ने असन दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन गुरु रामदास साहिब जी महाराज चरणा पास अरदास बेनती जोदरी है जी आप जी की कृपा सदका पावन पित्र इतिहासिक स्थान गुरुद्वारा साहब स्टॉकटन विखे अमृत वेले दी दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच पंज बाणे जी दे नितनेम उपरंत आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन सच्चे पातशाह जी समुचियां सेवावां ने बंदियां होईयां बेअंत भुलां बख्शनियां अगाहां तों सोझी समत बख्शनी बाणी पढ़ी सुनीदा भावदार संगत हिरदे ते सोना समूह संगत दी हाजरी तिल फुल पटावां दर ते प्रवान करनी सच्चे पातशाह जी समूह संगत वालों आप जी के हजूर कड़ाह प्रसाद जी की देख सज के हाजिर है प्रवान होवे प्रवान प्रसाद संगत विच वरतों दी आग्या बख्शो करो कृपा पावन पवित्र हुक्मनामे दी दात बख्शे संगतां नूं कृतार्थ करो सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्व वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भई अकाल की सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा क्वार होए सब मिलेंगे बोले सो निहाल